0: तेहरान को कोई भी मुआशी फ़ायदा हासिल करने से पहले अपने वादों को पूरा करना होगा। एक आला अमरीकी एहलकार ने सहाफ़ियों को बताया कि इन फवायद में जंग से मुतासर मुल्क ईरान के लिए $300 अरब का एक इमदादी फंड भी शामिल हो सकता है, ताहम इस फंड का जारी होना मुकम्मल तौर पर ईरान की कारकर्दगी से मशरूत होगा। एहलकारों के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर जे डी वैंस और ईरानी पार्लियमान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने गुज़िश्ता इतवार के रोज़ इस इब्तदाई माहदे पर डिजिटल तौर पर दस्तखत किए हैं। एक अमरीकी एहलकार ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि सदर ट्रंप इस पर ख़ुद दस्तखत करना चाहते थे ताकि वो इस अमन अमल के लिए अपनी संजीदगी दिखा सकें। नायब सदर जे डी वैंस ने CNN को बताया कि यह माहदा तकरीबन 150 सफ़े का है, इसलिए यह बहुत ही अमूमी और बुनियादी दस्तावेज़ है। वांस इस हफ्ते मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे और स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा में होने वाली दस्तखतों की तकरीब में शिरकत करेंगे। इस दस्तखत के साथ ही 60 दिनों का वक्त शुरू हो जाएगा, जिसके दौरान ईरान और अमरीका एक मुकम्मल अमन माहदे तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। एक अमरीकी एहलकार ने बताया कि हम जौहरी प्रोग्राम के मुज़ाकरात को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, लेकिन तेल की कीमतों में इजाफे और आलमी मईशत पर असरात की वजह से आबनाए हुरमुज़ का रास्ता खोलना सबसे पहली तरजीह होगी। वाज़ ने CNBC को भी बताया है कि ईरान के साथ यह तय पाया है कि यह बहरी रास्ता तवील मुद्दत के लिए बिल्कुल मुफ्त खोला जाएगा और तकनीकी मुज़ाकरात में इसी बात को हतमी शक्ल दी जाएगी। दूसरी तरफ ईरान की वजारत खारजा ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि इस माहदे के तहत वह अपने हुरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई टैक्स या टोल नहीं लगाएगा, बल्कि सिर्फ बहरी खिदमात की फ़ीस वसूल करेगा।
1: अमरीका के नायब सदर जे डी वैंस ने कहा है कि इंतहाई अहम ईरान मुज़ाकरात से पहले तमाम कार्ड ईरान के अमरीका के हाथ में हैं। वैंस ने कहा है कि वाशिंगटन एक मजबूत पोजीशन में ईरान के साथ मुज़ाकरात में दाखिल हो रहा है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया है कि इस हफ्ते के आखिर में होने वाले मुज़ाकरात कामयाब रहेंगे। वैंस ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ट्रंप इंतजामिया जुमा के मुज़ाकरात में मुकम्मल शिरकत की तवक्को रखती है और तेहरान के साथ बराह रास्त रबते ने इस अमल की हरकियात को तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमरीका को एक अहम फौजी इक्तसादी और सफारती फ़ायदा हासिल है और यह कि जब तक ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर तवील मुद्दती पाबंदियां कबूल नहीं करता, वाशिंगटन पर समझौता करने की कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होगी। नायब सदर ने मजीद कहा है कि अगर ईरानी क़यादत कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करती है तो वो ताल्लुकात में बेहतरी के लिए भी तैयार हैं।
0: वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तय पाने वाले नए माहदे ने तल अबीब में शदीद हलचल मचा दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हुकाम ने इस माहदे को इंतहाई हैरान कुन करार दिया है और इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा है कि इसराइल को धोखा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ यह दावा भी किया गया है कि इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अमरीकी नायब सदर जे डी वैंस के दरमियान लबनान में फौजी मौजूदगी के मामले पर फ़ोन पर इंतहाई तल्ख और कशीदा गुफ्तगू हुई है। काबीना के इजलास से खिताब करते हुए नेतन्याहू ने वाज़े किया कि बैरूनी दबाव के बावजूद वह अपनी मर्जी से कार्रवाई करने की आज़ादी को बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि बैरूत और तहरान दोनों जगहों पर हमें इस्तिस्ना हासिल होगा। मजीद बरआ इसराइली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ आयाल जामिर ने ऐलान किया है कि इसराइली फौज सरहदी लाइन से पीछे नहीं हटेगी। याद रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि उनके मुल्क ने ईरान के साथ माहदे पर दस्तखत कर दिए हैं और आबनाए हुरमुज़ जुमे से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगा, जबकि तेहरान हुकूमत ने बताया था कि इस मुफाहमत की याददाश्त पर जुमे को स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा में दस्तखत किए जाएंगे।
1: इसराइल की जानिब से गजा में इंसानी बहरान और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल जारी हैं। अक़वाम मुत्तहदा ने ऐलान किया है कि इसराइली फौज गजा की पट्टी में अपने कायम करदा नाम नहाद येलो लाइन के करीब जाने वाले फ़लस्तीनियों को बराह रास्त निशाना बनाकर कत्ल कर रही है। अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने बताया है कि अक्टूबर 2025 से इसराइल इस लाइन का इस्तेमाल लोगों की आमदोरफ्त को रोकने के लिए कर रहा है और कंक्रीट के ब्लॉक लगाकर इसका दायरा मुसलसल बढ़ा रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि इस इलाके में आम शहरियों को सिर्फ इस लाइन के करीब होने की वजह से गोली मार दी जाती है। गजा में अवाखर हफ्ता शदीद फजाई हमलों और लड़ाई के दौरान जबालिया कैंप में अक़वाम मुत्तहदा के एक स्कूल के सहन को भी निशाना बनाया गया है। इन ममनुआ इलाकों के मुसलसल फैलने की वजह से दर्जनों शहरी खानदान एक बार फिर नकल मकानी करने पर मजबूर हो रहे हैं। तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने इस बात पर भी जोर दिया है कि गजा में तामीराती सामान लाने के लिए करम अबू सालम वाहद सरहदी रास्ता है और इस वाहद रास्ते पर इन्हसार की वजह से इंसानी इमदाद पहुंचाने में शदीद रुकावटें और मुश्किल पेश आ रही हैं।
0: इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में नौजवान गैर कानूनी इबादतकारों के लिए 1.89 मिलियन डॉलर मुख्तस कर दिए हैं। रोज़नामा यदियोत आखरनोट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू की क़्यादत में इसराइली हुकूमत रियासी बजट से 1.89 मिलियन डॉलर को हिल टॉप यूथ नामी गैर कानूनी यहूदी आबादकारों के लिए मुख्तस करने का

ज्यादा रखती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फंडिंग प्लान पर जून से साल के आखिर तक अमल दरामद मुतवक्को है। अखबार ने कहा है कि यह मंसूबा, जिसमें मकबूजा मगरबी किनारे के 650 से जायद नौजवानों का अहाता किया गया है, तहरीक के हर रुकन को खुराक, लिबास और ज़िंदगी गुजारने के दीगर अखराजात की मद में तकरीबन $550 महाना फराहम किए जाएंगे।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: यूक्रेन ने एक तारीखी खानकाह समेत मुल्क भर में भारी रूसी हमलों के बाद अक्वामे मुत्तहदा की सलामती कौंसल से हंगामे इजलास का मुतालिबा किया है। कीव ने बरोज पीर जारी करदा बयान में कहा है कि इन हमलों ने यूनेस्को के आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल और यूक्रेन के अहम तरीन मसबी और सकाफती मकाम में से एक पेचरेसक लावरा खानकाह के अंदर डोरमेशन कैथेड्रल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के वजीर खारजा एंद्रेस सबीहा ने यूरोपीय सलामती और तआवुन तंजीम OSCE कौंसल ऑफ यूरोप और यूनेस्को के जरिए भी जवाबी इकदाम शुरू कर दिए हैं। सबीहा के मुताबिक हमले में केव, खारकेव, डेम्प्रो और दीगर शहरों को निशाना बनाया गया है। हमले शहरी और हंगामी इमदादी कारकुनों की हलाकतों और बच्चों के जख्मी होने का सबब बने हैं। एक से जारी करदा बयान में सबीहा ने कहा है कि रूस हमारे लोगों को हमारे शहरों और हमारे सकाफती और मजहबी विरसे पर हमला करके बैन अल-अक़वामी कानून की और उन उसूलों की खुली तोहीन कर रहा है जिनके दिफा के लिए अक़वामे मुत्तहदा कायम की गई थी। यूक्रेन ने मजबूत बैन अल-अक़वामी रद्द अमल का मुतालबा किया और कहा है कि मास्को पर दबाव में इजाफा जरूरी है।
2: रूस ने यूक्रेन पर हमलों में एक तारीखी दर्जगाह को निशाना बनाने के इल्जाम की तरदीद की है। रूस वजारत खारजा ने मास्को के रात के वक्त शदीद बमबारी के दौरान यूक्रेन के दारकूमत ने एक तारीखी खानकाह को निशाना बनाने से मुतालिक यूक्रेन और मगरब के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और उन्हें बेबुनियाद और मनगढ़ंत दावे करार दिया। फ्रांस में इस हफ्ते मुतवक्का G7 सरबराह इजलास से कबल हज़ारों साल पुरानी खानकाह को भारी नुकसान पहुँचने की इत्तला मिली है। तहम रूसी उमूर खारजा इस मौक़ पर बरकरार है कि कीव में पेजरिस्क लावरा खानकाह को फौजी फैक्ट्रियों के खिलाफ ऑपरेशन में निशाना नहीं बनाया गया। वजारत अमरीकी साख्ता पेट्रियाट एयर डिफेंस मिसाइल को इस तारीखी इमारत को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार ठहराया है।
1: जनूबी कोरिया के पहले मुकामी तौर पर तैयार करदा लड़ाका तैयारी KF-21 को हुकूमत की तरफ से फ्लाइट सेफ्टी का सर्टिफिकेट मिल गया है। ये बात डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगल के रोज़ बताए। यूनहाप न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये सर्टिफिकेट पीर के रोज़ इस वक्त दिया गया जब तैयारी ने परवास और हिफाजत के मराहल का एक सिलसिला मुकम्मल किया जो 2021 और 2026 के दरमियान मुनक्कद किए गए थे। DAPA के मुताबिक एक जायजा कमेटी ने तस्दीक की है कि KF-21 ने 14 तशखीसी जुमरों में तमाम 745 तकनीकी मराहल को पूरा किया है जिनमें तैयारी का ढांचा, फजाई इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी शामिल हैं। ये लड़ाका तैयारा मई में जंगी तैयारों की तशखीस का मरहला भी पास कर चुका था। जनूबी कोरिया का मंसूबा है कि वह 2032 तक 120 अदद KF-21 जेट तैयारे हासिल करेगा। पहला 40 तैयारों का प्रोग्राम जो फजा से फजा में जंगी सलाहियतों पर मरकूज हैं 2028 तक फराहम किए जाने का शेड्यूल है जबकि इसके बाद मजीद 80 जेट तैयारे शामिल किए जाएंगे जिनमें फजा से जमीन और बहरी जहाज मुखालिफ सलाहियतें मजीद वसी होंगी।
2: अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में अमरीकी फजाई का एक बड़ा B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बमबार तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:20 पर परवाज के कुछ ही देर बाद पेश आने वाले इस हादसे में तैयारे में सवार तमाम अमले के 8 अरकान हलाक हो गए हैं। बताया गया है कि तबाह होने वाला B-52 बम्बार तैयारा रेडार को जदीद बनाने के मंसूबे के तहत एक इम्तिहानी मिशन के लिए रवाना हुआ था। हादसे की असल वजह अभी तक वाजे नहीं हो सकी है और हुकाम का कहना है कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात में 6 माह तक का वक्त लग सकता है। बोइंग कंपनी का तैयार करदा B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस अमरीकी फ़ौज के आलमी ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाला सबसे अहम और तवील फासले तक मार करने वाला स्ट्रेटेजिक बम्बार तैयारा माना जाता है।
1: नाइजीरिया की शुमाल मगरबी रियासत केबी के एरेवा इलाके के गांव फास्कन राफी पर लाकोरावो बागियों के हमले में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए हैं। इतवार के रोज़ होने वाले इस हमले को रिहायशियों ने हालिया दिनों में कम्युनिटी पर किए जाने वाले सबसे बड़े हमलों में से एक करार दिया है जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। मुतासरीन को करीबी तिब्बी मराकज़ में इलाज फराहम किया जा रहा है। रियासत केबी की हुकूमत ने वाकये की तस्दीक की और डिप्टी गवर्नर उमर ताफीदा की क़यादत में एक वफ्द मुतासरा कम्यूनिटी को भेजा ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जा सके और सोगवार खानदानों से ताज़ियत की जा सके। दौरे के दौरान ताफीदा ने हलाकतों की मुज़म्मत की और मज़ीद हमलों को रोकने के लिए सख्त हिफाजती इकदाम का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि जानों का ज़िया ने हमें गहरा दुख पहुँचाया है। हमारी इंतजामिया अमन की बहाली के अज़्म पर कायम है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इलाके में इजाफी सिक्योरिटी अहलकार और ऑपरेशनल वसाइल तायुनात किए जाएंगे। सदाए तुर्की से खबरें खत्म हुई। اور لیجے سامن اب ایک گیت سماعت فرمائیے. گیت کے بول ہیں علی شام ادم اور گلوکارہ ہیں سیبل پلکچ.

सामिन, एथोपिया में 1 जून 2026 को होने वाले 7वें आम इंतखाबात वज़ीर आज़म अबी अहमद और बरसर इकदार फलाह पार्टी के लिए एक मुतवक्का सियासी फतह पर ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन मुल्क का सिक्योरिटी एजेंडा इंतखाबात के साथ साथ शुमाल की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मरकूज़ है। ख़ास तौर पर तिग्राय के इलाके में हालिया सियासी और फौजी सरगर्मियाँ इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि एथोपिया एक बार फिर संगीन सिक्योरिटी बहरान का सामना कर सकता है, जो कि 2020 ता 2022 के दरमियान लाखों लोगों की जिंदगियों को मुतासर करने वाली जंग के बाद एक नाजुक अमन के दौर में दाखिल हुआ था। और सैम के नॉर्थ एंड ईस्ट अफ्रीका कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कान देवेजी ओलू का इस मौजू पर तबसरा पेश खिदमत है। मौजूदा कशीदगी के मरकज़ में तिग्राय पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के अंदर ताकत की जंग है, जिसे जंग के बाद के दौर में दोबारा मुनज़म करने की कोशिश की जा रही है। नवंबर 2022 में तय पाने वाले प्रिटोरिया माहदे के बाद तिग्राय की सियासत में क़्यादत और नुमाइंदगी के तनाज़ियात वक्त के साथ साथ तंजीम के अंदरूनी मुकाबले में बदल गए। ख़ास तौर पर डेविडसियन गैब्री माइकल की क़्यादत में काम करने वाले ग्रुप की जानिब से इलाकाई इदारों पर अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिशों ने अंदरूनी सियासी कशीदगी को मज़ीद गहरा कर दिया है। हालिया महीनों में हरीश शख्सियात को बेअसर करने और तिग्राय की इलाकाई हुकूमत पर TPLF के असर व रसूख को दोबारा कायम करने की कोशिशें जाहिर करती हैं कि तंजीम के अंदर ताकत को यकजा करने का अमल तेज़ हो गया है। ये सूरत हाल न सिर्फ तिग्राय के अंदरूनी सियासी तवाज़ुन को मुतासर कर रही है, बल्कि अदीस अबाबा और इलाकाई हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात को भी एक नया रुख दे रही है। दूसरी तरफ मौजूदा अमल को पिछले बहरानों से अलग करने वाला बुनियादी उनसर नए इत्तेहादों की तलाश है। तिग्राय जंग के दौरान एथोपिया की वफाकी हुकूमत के सबसे अहम हामियों में से एक एरिट्रिया और TPLF के दरमियान ताल्लुकात में हालिया दिनों में देखी जाने वाली नज़दीकी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इसी तरह अमहारा के इलाके में वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुसलह जद्दोजहद करने वाले फानो ग्रुप्स के कुछ अनासर और तिग्राय के रहनुमाओं के दरमियान भी एक खुफिया ताउन की बुनियाद बनने की खबरें मौजूद हैं। अगरचे इन ताल्लुकात की वसअत और गहराई के बारे में कतई आदद शुमार मौजूद नहीं हैं, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है के उसूल पर बनने वाली ये नई मसावात एथोपिया के शुमाल में एक इंतहाई पेचीदा सिक्योरिटी माहौल पैदा कर रही है। इस कशीदगी का सबसे ख़तरनाक पहलू मगरबी तिग्राय का मसला है। मगरबी तिग्राय, जिसे तारीखी तौर पर तिग्राय के लोग अपने इलाके का हिस्सा समझते हैं और अमहारा के लोग अमहारा